0: बाबा फू के नाम बिल्कुल सब लोग ट्रेन को शिलका वो ना बापू का बुद्ध बम जैन माले लगे को ना बला कम ने श्रवण को शिलका वो ना बापू का भाषा ने माना माल पोसा लाका को बला बनाने को शिलका वो ना अब फिर जो वाला मैं वो ना जेल पापा रुमत माले ने लंबा ब्लॉग ना कम जो चुप लाका पे चला कि हम चुका ना कर कर को मुचिनो बम बम जी क्रीम
1: मुचिनो बम बम मेजी
0: Six o'clock
1: now,